0: आज कल का आगे मजा सब मेरा जी हाउस वर्ड
1: भाई
0: कहता आज सुबह का
1: रसवंसा ये कोई है सर कल का पी या मैं